0: ସବୁ ପରାମର୍ଶକୁ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକକୁ ଲଗାଓ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ସକାଳ 6:00। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରେଲ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र एमएसी मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात

0: प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रचार करलो आकाशवाणी दिल्ली रु। श्रोता माने कार्यक्रम सुनछंती आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रु। ए सकल जीव जगतर परिकल्पना तुमरी ठारु ही आरंभ आउ तुमरी ठारु ही शेष। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସକାଳରେ ତୁମରି ଚରଣବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ନେଇ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜି ସକାଳର ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ସଂସ୍କୃତ ବନ୍ଦନା। ପୁରାତନ ରଚନାର ଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ବିନୋଦ ଶର୍ମା।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

0: बीजिंग नगरं प्राप्तवान्। असौ अद्य स्वीय चीन देशस्य समकक्षेण विदेशमन्त्रिणा वांगी इत्यनेन सह उभयोः देशयोः सीमा विवाद सम्बद्ध विषये विशेष प्रतिनिधीनां वार्तायाः पञ्चविंशतितमे चरणे भागं ग्रहीष्यति। ह्यः वार्ताहर सम्मेलने विशेष प्रतिनिधीनां वार्ताम् उद्घोषयन् चीन देशस्य विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता लिन जियान उक्तवान् यत् डोभालः वांगयी च सीमा विवादस्य अतिरिक्तम् अन्येषु विषयेषु अपि गहन चर्चां करिष्यतः। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य एम्स्टेल्विन नगरे आयोजिते एफआईएच इत्यस्य विश्वचषकस्य पूल क्रीडायां भारतीय पुरुष दलं अर्जेंटीना दलेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: संस्कृतरे संवाद सुनिले रिले करि प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ति। सुनंतु आज हम केन्द्ररु प्रचार हेबाकथिया विभिन्न कार्यक्रम संपर्करे सूचना आमर स्वास्थ्य शुणे सका सतटा बाजि दस मिनिटे रेलकोरी प्रचार कर आकाशवाणी कटक केन्द्र सका सतटा बाजि पचीस मिनिटे वर्ण विभा बर्णाली शुणे कार्यक्रम मल्हार एथिरे गां कहानी शुणे मैदलपुर गां संपर्क विशेष प्रसंगे शुणे गर्भराय मंदिर विषय प्रतिमा जादवों कथबार्ता सुरलहरी कार्यक्रम प्रचार करिबो सकाळ 8 बजे 30 मिनिट शिल्पीमाने हेले देवेन्द्र कुमार अधिकारी एवं अनुराधा पाणिग्राही लघु संगीत शुणे सकाळ 8 बजे 45 मिनिट हिंदी चलचित्र गीतकु नहीं कार्यक्रम गीतिधारा शुणे सकाळ 9 सकाळ 9 बजे 30 मिनिट शुणे बन्नमल्लिका कार्यक्रम एथिरे शुणे कंठशिल्पी गीतिकार एवं संगीत निर्देशक ब्रजबंधु खुरा सहित साक्षात्कार हिंदी चलचित्र गीत शुणे पूर्वाह्न 10 बजे 5 मिनिट दिन 12 दिन 2 बजे 15 मिनिट एवं संध्या 6 बजे 10 मिनिट एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शुणे सकाळ 10 बजे 30 मिनिट आज दिन 11 शुणे आकाशवाणी लाइव कंद भाषार कार्यक्रम पुनैलेंज शुणे दिन 12 बजे 30 मिनिट हिंदी भक्ति गीत शुणे दिन 12 बजे 50 मिनिट दिन गोटे बजे 5 मिनिटे शुणे हिंदी सुगम संगीत दिन गोटे बजे 20 मिनिटे शुणे महिला कार्यक्रम घर और घरणी एथिरे सुखी दंपति क्रम से शुणे सुरेन्द्र कुमार महापात्र एवं श्रद्धांजलि महापात्र साक्षात्कार परे शुणे गर्भधारण समय उपयुक्त जत्न संपर्क अपराह पांचटे शुणे जुववाणी कार्यक्रम एथिरे संपादकीय शुणे चक्षुदान महतदान संपर्क परे दलगत आलोचन शुणे आज युवपीढ़ीर प्रमुख समस्या और समाधान संपर्क अपराह 5 बजे 30 मिनिट शुणे हालो चैतीजन कार्यक्रम श्रीमद भागवत शुणे संध्या 6 बजे 20 मिनिट संध्या 6 बजे 30 मिनिट शुणे उदय भारत संध्या 6 बजे 55 मिनिट आज प्रसंग राति 17 बजे 25 मिनिट जिला हालचाल शुणे देवगढ़ जिला संपर्क एवं राति 17 बजे 30 मिनिट शुणे किसानवाणी कार्यक्रम यह समस्त कार्यक्रम रेल कर प्रचार कर आकाशवाणी कटक केन्द्र ओडिया चलचित्र गीत शुणे राति 7 और राति 8 शुणिले आज हम केन्द्र प्रचार होगा विभिन्न कार्यक्रम संपर्क सूचना आकाशवाणी जयपुर केन्द्र कार्यक्रम शुणुंट परवर्त कार्यक्रम रेलकोरी प्रचार करुच आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणिपारे अल्प समय मध्यरे

0: ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल

0: @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरल में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पोकलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट।

0: साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच आखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछी अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रूपये के लेनदेन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रूपये किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Union Home Minister Amit Shah asks all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat, flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And in men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. We have more from a correspondent.
6: Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilization strength with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister also called upon the officer trainees to serve as catalytic agent for country's economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. Mr. Modi urged the officer trainees to work towards making India a more attractive global tourism destination by showcasing its civilizational, cultural and geographical strength. He suggested leveraging the Bharat Ko Jaane New India quiz to generate greater interest in India among young people across the world and encourage the use of AI and gaming to make such initiatives more engaging. The group comprised 50 IFS officer trainees who come from different states and union territories across the country. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
5: Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center MSC platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases. We have more from a correspondent.
7: On the first day of the conference, discussions focused on critical aspects of national security and document on narcotics control, detection and deportation of illegal migrants, a policy framework to combat cybercrime and proxy warfare by Pakistan. The two-day conference is being held in a hybrid format and is being attended by over 850 participants from across the country. On the second day today, the conference will focus on the threat landscape from sub-aerial systems and formulating countermeasures. Securing the blue economy, information warfare and its implication on national security and the need for a biosecurity framework. With Anupam, this is Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
5: The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as a backbone of India's digital payments ecosystem. The UPI, which was launched on 25th August 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. We have more from a correspondent.
8: The finance ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore to nearly 314 lakh crore during

0: ଶୁଣିଲେ ବନାମଲ୍ଲିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶୁଣିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिकों को दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक

0: संबंधों को गति देने में प्रेरक भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय दूतावासों की डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध को मजबूत करना है। भाजपा के महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ମିଡିୟମ୍ ୱେଭ୍ରେ 204.5 MHz ତଥା 1470 kHz ଯୋଗେ ଏବଂ FM କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି 103.6 MHz ଯୋଗେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ AIR ଆପ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ।

0: एक ऐतिहासिक पदक्षेप लिखुची सफलतार कहानी सुभद्रा
1: चारोटी किस्तीर सफल वितरण सह एक कोटी रु ऊर्ध महिला जीवन रे आसी स्वावलंबनर नुआ परिचय जीविका विकासरु रोजगार उद्यमरु आत्मविश्वास सुभद्रा गढुची समृद्ध ओडिसार नुआ भविष्यत आसंता अगस्त 28 पवित्र राखी पूर्णिमा अवसर रे एक कोटी रु ऊर्ध महिला सुभद्रार पंचम किस्ती बाबदक मिलिबो 5000 कोटी रु ऊर्ध टंकार सहायता राशि एही सहायता देबो नुआ शक्ति नुआ आशा नुआ संभावना
2: जीविकार समृद्धि रा यात्रा सुभद्रा महिला ओ शिशु विकास विभाग ओडिसा सरकार
3: चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फॉर्म दाखल करंतु आज ही एही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 1553333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नीतेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं, उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
3: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
2: बिल्कुल,
3: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं।
2: जी।
3: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
2: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
3: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
2: जी
3: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
2: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
3: विमलेश जी लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
2: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
3: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
2: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांग नागा जनजाति निवास करती है। कोयांग समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
3: तो श्रोताओं, यदि कभी आपने कोयांग पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे।
2: जी।
3: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
2: कोयांग जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं।

0: उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
1: श्रोताओं, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांग के योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
0: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांग समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
1: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
0: जी,
1: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
0: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओं, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
1: जी, तो श्रोताओं, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती
0: हैं,
1: लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
0: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
1: तो श्रोताओ, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है।
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
0: सरितपुर की कहानी।
2: अरे भागो भागो, वो देखो
3: हमारे पशु पक्षी को क्या हुआ है, हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
2: अरे
4: ये
2: हमारे खेतों से पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
4: फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया,

0: गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा।

0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
1: अरे काट काट काट, मेरा भाई क्या देख रहा काट।
2: अरे मैंने आज पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
3: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
4: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
5: और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
5: उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
6: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
7: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
8: हमारे हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
9: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
6: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
9: फसल बह गई।
8: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
9: सारा
8: सामान
9: जल्दी
8: से ऊपर ले जाना होगा।
9: चलो जल्दी ऊपर,
8: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी, चलो
9: चलो चलो,
8: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
9: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर, प्रकृति का संतुलन

0: न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
1: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी तुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कलकल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार। अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
2: अभी आप सुने थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
3: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा है जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो है पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी टेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसे चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें एक शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी।

0: करूंगी।
1: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा, ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू मैम।
2: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
3: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
2: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
3: वर्ष था 1977 का जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
2: श्री ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
4: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
0: थैंक यू सर।
4: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
0: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
4: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
0: आप? धन्यवाद सर, लेकिन...
4: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
0: सर।
4: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
0: थैंक यू सो मच सर।
3: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
2: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
5: आज तो बड़ा मजा आ जाएगा दौड़ देखने में।
6: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही है। हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई।
7: पीटी उषा

0: बेटी उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। बेटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
1: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गईं। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
0: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
1: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गांव में हुआ था। पयोली गांव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
0: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
1: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
0: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
1: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
0: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: इतबले पर्यंत सुनुथुले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी जयपुर। भेटी दौचु आकाशवाणी लाइव।

0: ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି।
1: एक ऐतिहासिक पदक्षेप लिखुची सफलतार कहानी सुभद्रा
2: चारोटी किस्तीर सफल वितरण सह एक कोटी ऊर्ध्व महिला जीवन रे आसी स्वावलंबनर नुआ परिचय जीविका विकासर रोजगार उद्यमर आत्मविश्वास सुभद्रा गढ़ुची समृद्ध ओडिशार नुआ भविष्यत। आसंता अगस्त 28 पवित्र राखी पूर्णिमा अवसर रे एक कोटी ऊर्ध्व महिला सुभद्रार पंचम किस्ती बाबदक मिलिब 5000 कोटी ऊर्ध्व टंकार सहायता राशि। एहि सहायता देव नुआ शक्ति नुआ आशा नुआ संभावना
1: जीविकारु समृद्धि रो यात्रा सुभद्रा महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
3: चासी भाई भौनी माने पीएम किसान किस्ती पाइबा पई वार्षिक ई केवाईसी बाध्यतामूलक एथि पई pmkisan.gov.in पोर्टल रे निजर ई केवाईसी जांच करै नियंतु। आपण निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई एही काम करि परिबे किंबा पीएम किसान मोबाइल एप माध्यम रे निजे करि परिबे। मन रखंतु जदि पोर्टल रे आपणक जमीर तथ्य नाही तबे एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री माध्यम रे फार्मर आईडी करंतु। किस्ती टंका पाइबा पई बैंक खाता रे आधार संयोग करंतु एवं एनपीसीआई मैपिंग फार्म दाखल करंतु। आज ही एही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु। अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।
0: पुणि थरे आपनको स्वागत करुछु आजिरो आकाशवाणी लाइव परिसरकु। हाँ बंधु, जीवन हेउची एमिति एक गणित जहार समाधान पाई प्रतिदिन किछि ना किछि नुआ सूत्रर प्रयोग करबाकु पड़िथाय। आउ एठी ही रहिछि संपर्कर प्रकृत परिभाषा। ଅନେକ ଦିନର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ସମୟଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ବେଳେ ଅନେକ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାକ୍ୟରେ ସଂଯମତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଅତି ସାମାନ୍ୟ କଥାଟି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ଦେଉ, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ଆଣୁ।

सारी दुनिया से ये जिंदगी है बड़ी, सारी दुनिया से ये जिंदगी है बड़ी, जिंदगी से मगर दोस्ती।

0: एरा था कि मारो एने कि नाई तिनी का दी नहीं कि वजह समा पड़ी खा चौ इटिनो अटे हाले वजह हाले चे चेंज के ने है और मांगो जी के ला डबू करचोस के ओ मेडिकल तो हाल तक असुविधा एरा था कि डबू डुमास के खर्चो आनो ए तक मारो जित की नहीं इजो परिष्कार रोइनो जित की जागृत आनो एचे के मांगो डबू डुमास के ला बंचो यानो निकता
1: हांगाड़ू लेते माँ परिवेश होते माँ इलुते निहने के जो जत्नवान रहेन निहि खाद्य सफा सुथरा खाद्य तीन स्वच्छ खाद्य तीन एचि सारे माँ रोग दुकास के उणा आयाने ए कथा मार हाडा ही चाहे पुनः ले जो कार्यक्रम हाटा ताके रही दिन
0: मंगलवार ओडे शनिवार मध्याना पुटा 12:30 ता वेस्पिया ही ने
1: मांगे हाले चिट्ठी हिया तू माँ टिकना होते
0: पुनः ले जो कार्यक्रम मार्पत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी जयपुर
1: जिला कोरापुट पिन कोड नंबर आते 7640005
0: 12:30 जोहरा।

0: পরপরে শুনলে কতটি হিন্দি ভক্তিগীত। আকাশবাণী জয়পুর সময় বর্তমান দিন গোটাই বাজিবাকু যাউচি। আমার পরবর্তী কার্যক্রম হিন্দি সংবাদ রিলে করে প্রচার করুছু আকাশবাণী দিল্লির।
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों

0: के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर आरंभ करुछु हिंदी सुगम संगीतर कार्यक्रम। प्रथम शिल्पी माने हेले खुशाली कुमार एवं तुलसी कुमार, गीत रचना खुशाली कुमार एवं पुरातन रचना।

पर तुम में शायद कुछ खास है। तुम्हारी आंखों में बच्चों की सी आस है। तुम्हारी आंखों के शीशे में मेरा चेहरा दिखा है मुझे। मेरे चेहरे की रंगत क्या खूब दिखती है इनमें। सोचते हैं अब इन्हीं में रहेंगे।

0: 8030692 7 किंबा 9449408097 नंबर रे।
1: सहज एवं सरल उपाय रे अल्प टंका रे आपण आकाशवाणी जयपुर केंद्र रे विज्ञापन दियंतु।

0: जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, जमीन के तारे। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और एस मोइंदर का संगीत। और इस गीत के साथ ही नेहा अगरकर देसाई को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और आरती आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हालचाल?
2: बिल्कुल ठीक।
1: मजे में है?
2: बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
1: जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती है।
2: बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार।
1: और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में।
2: बिल्कुल। और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं।
1: नेकी और पूछ पूछ।
2: तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सुनाली।
1: यानी हर घर का यही हाल होता है ना?
2: बिल्कुल।
1: यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे ये प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी।
2: बिल्कुल यही होता है सोनाली, सच बताऊं अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है।
1: घर में का कोई एक सदस्य कह देता कि रुको रुको फेंको मत, फेंकना मत। पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है,
2: उन्हें तो हम खास तौर पर संभाल के रखते हैं।
1: हाँ, अरे नहीं नहीं फेंकना मत, कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमको कुछ भर के देना होगा, अगर हमें तो उसमें हम भर के देंगे। तो ऐसे ही हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
2: जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह,
1: या फिर वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं।
2: बिल्कुल। और हम साथ में लेकर आए सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नमलई, जो कि सह संस्थापक है एम

0: पीआर व्हीकल्स की, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं।
1: और हल्की फुल्की बातें, इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी।
0: अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना,
1: मजेदार।
0: हाँ, सखा हमें बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे वो बताएं अपने अनुभव की, वो कैसी, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है या फिर खुश हो जाते हैं।
1: कल ही तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए, या फिर करेले सबने खाते तो भी एक किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर पत्नी जी को यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता है अरे यार इन्हें फालतू ही कह दिया सब्जी लाने के लिए।
0: बिल्कुल, फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सही से रख भी नहीं सकते,
1: फेंक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल, तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें, ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर सकें।
1: वो चटपटे अनुभव होंगे, चुटीले अनुभव होंगे, तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी हंसेंगे उन अनुभवों का पढ़ के।
0: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की। तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली, वो है घाव पर नमक छिड़कना।
1: बहुत अक्सर होता है बहुत लोगों में, यानी ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है तो जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, पता होता है कि उसे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
0: या
1: क्या?
0: आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। जी, तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से।
1: सुनते हैं गीत।

0: किसके घर चोरी करने जा रही है छोटी? हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते, हम दिलों की चोरी करते हैं।
1: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना।
0: बिल्कुल। और तो आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी समझ लीजिए, सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं,
1: प्रेरणादायी।
0: बिल्कुल, जिन्होंने जो प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की, जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं।
1: तो आज हेमलता अन्नामलाई जो सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
0: बिल्कुल। उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
1: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
0: बिल्कुल। और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई। बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
1: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
0: जी। और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे। और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए।
1: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा बचत, रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था।
0: बिल्कुल। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना।

0: कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीक को स्वीकार करवाना।
1: और खास बात तो ये थी कि हेमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: बिल्कुल, अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांगजन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
1: क्या बात है। और इसके अलावा एमपीआर ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी ने लगभग 40% महिलाएं काम करती है। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन एसटीईएम प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
0: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि तकनीक, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
1: और अब लेते हैं ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है।
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना।
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ।
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना।
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते मैं हंसकर लोटपोट हो गई। एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीदारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देखकर परखकर लेके आना, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है, जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा, टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना, साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना वो दे देते हैं, वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं थे ऐसा कहकर फ्री में नहीं लाता।
1: बहुत अच्छी बात। सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ। तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं मैसेज। वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर पत्नी हो या माँ हो उसका मुआयना करती है। सजा की शुरुआत कैसी होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं, अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है।
0: और एक साथ ही कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई ला कर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है। मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है, अब मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात कही। और एक और मैं श्रुतंजु लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है पूरी सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती हैं, उसी समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है, और साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं। ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ की जगह कुछ और ही बनाना पड़ा है, यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं तो कुछ और ही बनाना पड़ा। हल्की फुल्की बातों में पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने उसी चीज को लिखा है वापस।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही,
1: नहीं नहीं नहीं आप पढ़िए।
0: एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है और कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है, अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में चलना, वैसे सब्जी खरीदते हैं

0: हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी, और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं। मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं, यानी देखिए दोनों दोनों मिलके जाते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
1: और साथ ही हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं, भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोकझोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है।
0: क्या बात है। और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है। साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नापतुल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना, आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूं, ताकि सब्जियों और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं। खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूं।
1: अच्छा, और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है। ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं, लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है। कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता, लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं, वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं।
0: एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी, और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है। बिल्कुल होता है घर घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं, और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता एक किलो करेला उठा रहा है, या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए, तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर अब हमें गीत सुनना है।
1: बिल्कुल गीत सुनना है।

0: तो आप किनका किन की बात लेने जा रही हो?
1: हाँ, आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: तो हम एक श्रोताएं जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं है सब्जी। और एक और श्रोताएं जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरी इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुनकर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी, एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुनकर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथी कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दूर संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी, हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर की और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी अच्छी बात है,
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है, जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते। मनपसंद चीज न मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई ये चीज नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना?
1: बिल्कुल,
0: डाइट खाने से अच्छा ऑप्शन है,
1: पहले ही बात कर लीजिए आप।
0: एक साथी कहते हैं कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ।
1: हाँ बिल्कुल, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज पुरुष भी पूरी उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है। कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देखकर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
0: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के

0: इसीलिए
1: और वैसे भी कहा है ना कि निंदक मेरे राखी है, तो भाई ऐसे क्रिटिसाइज होते होते होते बहुत अच्छी सब्जी लेकर आने लगेंगे आप,
0: बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और अब हम अपने अगले विषय पे आ जाए जो है घर को हम पुराने सामानों का गोदाम ना बनाए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं घर या पुराने सामानों का गोदाम, विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतने ज्यादा पुराने सामान जमा कर लेते हैं लेकिन वो हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी जरूरत का नहीं है तो उसे किसी जरूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकिलिंग कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा, घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज्यादा पुराना हो गया है तो आपके काम का नहीं है तो आप इसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकिलिंग करवा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम, इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है यह विषय। हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों और सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम।
1: क्या बात है। एक साथी कहते इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने के नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है इन्होंने।
0: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से जो चीजें होती हैं वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या हुआ पूरा
1: कॉकरोच हो जाएंगे,
0: कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
1: जी, एक साथ ही लिखते हैं घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले एक साल से इस्तेमाल में नहीं आई है उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करें।
0: बिल्कुल। और हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय हमें बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। यानी कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती है लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती है और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है लेकिन हर चीज को बचाकर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाले कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
0: वाह, इन्होंने गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं, इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल बरगद के पेड़ ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने की बजाय आप किसी दूसरी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के लिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं फिर कुछ जमा हो जाता है, पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है,
0: गीत सुनना है,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो अब हम अपने एक श्रोता है उनका कमेंट ले लेते हैं जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीजों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का जो पीतल के जो सामान होते थे उनको हमने अच्छे से रख लिया है, तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बताते हैं कि इस तरह की चीजें उनको रखनी है, ये इस तरीके की चीजें तो आप रख सकते हैं,
1: ये ना बहुत उससे जुड़ी भावनाएं भी होती है ना, तो रखना भी चाहिए। और अब तो ऐसा हो रहा है ना चलन कि अब पुराने जमाने की जो चीजें है ना उसका ही महत्व बढ़ गया है, कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: ये तो चीजें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन बस आपको जो पुरानी जो इस तरीके की
1: खासकर प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें, रद्दी के जो पेपर हैं, उसके बाद में जो खराब टायर होते हैं उसे भी हम सहेज कर रखते हैं। होता यूं है कि बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, छत का पानी भर गया और फिर डेंगू मलेरिया होने लगता है, तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमें सफाई भी इस तरह से करें कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो कहते हैं कि कबाड़ वाली जगह पर धूल और नमी जमती है जिससे कई तरह के जीव जंतु सांप बिच्छू भी वहां पर डेरा जमा लेते हैं, लकड़ी के सामान में नमी के चलते फफूंद लग जाती है और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बचपन से हम देखते हैं जैसी बारिश खत्म होगी लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं और दिवाली के पहले पुराने सामानों को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जरूरतमंद को दे दिया जाता है, तो मतलब आप पुराने कबाड़ को मत रखिए, उसको निकाल दीजिए,
1: यानी दिवाली तक इंतजार मत कीजिए, हर दो महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा ही अच्छा होगा,
0: घर भी साफ रहता है थोड़ा, जब देखेंगे ना बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना वहाँ पे थोड़ा सा तनाव सा बना रहता है, आप खुद देखिए अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में उतना ही ज्यादा आपको अच्छी मानसिक शांति सुकून रहेगा।
1: और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपना समय बहुत ज्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं कि भाई सामान बढ़ा लिया फिर उसको पोछना है, उसको धोना है, उसे साफ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं, और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता और हम इन्हीं सभी कामों में उलझे रहते हैं,
0: लगे रह जाते हैं।
1: तो हमें इन सभी बातों को
0: बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
1: हाँ, ये तो बात।

0: बिल्कुल सही कही आपने कि जब हम खाली रहते हैं ना तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है, घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक लग जाए तो उससे पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए, तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है।
1: अच्छा, तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया,
0: समझाया।
1: तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताजा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगर शरीर के यही जो आपने जिस तरह से बताया तो वही बताने उस बात को किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है इस तरह से करने से, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों को करने से कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना। कहते हैं मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए।
0: बिल्कुल सही,
1: दुखों को नहीं, दुखों को ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए।
0: हाँ, तो आप क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, क्या आप बताने जा रही थी मुहावरों के बारे में?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
0: और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़क यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मारक बनाने की क्षमता रखता है।
1: एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो उसके बाद अगर मकान मालिक किराया लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है। कहते हैं कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई

0: पहले से ही किसी मुसीबत, दर्द
1: जी
0: या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे, तो इसे ये मुहावरा कहा जाता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: अगर कोई दुखी है तो उसके उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और
0: बल्कि मरहम का काम करें अपने शब्दों के माध्यम से। और अब गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और बहुत मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के, और आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप
0: और विविध भारती सुनते रहिए, और हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: नमस्कार, नमस्कार।
2: शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी
3: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
3: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी,
3: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
3: यस।
1: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ?
3: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना और बहुत सहज थे वो।
1: जी।
3: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
1: बिल्कुल। अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की
3: जी।
1: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
3: हाँ, ऐसे ही हमारा वही खेल वाली गुटली, हम भी खेलते थे वो सारी चीजें। गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना और
1: मिट्टी में
3: वो वाला खेल तो अच्छा। हम खूब खेले, खो खो संगीत कुर्सी ये सारे खेल हम खेलते थे।
1: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उस समय तो
3: अरे मार पड़ती थी, डांट किधर पड़ती थी।
1: तो बताइए ना वो एकाध किस्सा किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
3: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है। तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से और सुबह तक मेरा पैर इतना
1: सूजा था।
3: तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो वो ना सीधे सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ नहीं बोलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: इस तरह का
1: नैतिकता बहुत सिखाई
3: बहुत सिखाई जाती थी।
2: माँ बाप दोनों टीचर थे।
1: अच्छा,
3: मेरे
1: कौन से गांव की बात है?
3: ये जलगांव के पास एक गांव है कासोदा, वहाँ गांव की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी।
3: मोबाइल की जनरेशन है, ये यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको मतलब जैसे

0: स्पिरिचुअल चीजों में थी, तो मैं उनको लेके जाना वहां पे, मेडिटेशन ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया वो सब कुछ उनको
1: जी। तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
0: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
1: तो सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लौटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती तत्व तो किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं, हमने सुना है गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, कमाल
0: जी। आपकी बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है। तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज है, हाव भाव है, इतने साल हो गए उसकी कुछ आदतें हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल
1: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
0: जी। क्या
1: अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी है, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज्यादातर लोग तो ये विविधताएं जो है करेक्टर्स की ये स्क्रिप्ट देती है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगा जल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है
0: जी, जी, जी।
1: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
0: जी,
1: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
0: जी। वेलकम टू द जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
2: राजपाल
0: राकेश देशमुख है, आपकी कैसी
1: हमारी भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, वो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी ऐसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया, बस हमको खड़े हो जाओ यहाँ पे, ये करना है, ये मूव करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, हमने बोल दिया बस खत्म।
0: अच्छा,
1: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है, और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है एक्टिंग, बड़ी वेराइटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी इनके

0: एक नया अच्छा काम करने को मिला काफी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी है, एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द जंगल।
1: जी, अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित हैं और जिसमें आपने खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक 56, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी इन सब इंस्पेक्टर।
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
1: क्या बात है, प्रतिभा जी की फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं। आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप, वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं, और इतनी बार पुलिस की,
0: ये आपने सारी पुलिस पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम वही आ रहे हैं, हम ये नहीं जानना चाहते कि पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका का हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी?
0: तो सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी, लेकिन हाँ अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी, और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया, कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूं और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो नाना पाटेकर ने भी बुद्ध फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं किसी और से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब, तो उन्होंने किया। फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
1: तो रामगोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी हुई कोई किस्सा बताइए, बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
0: बहुत ज्यादा किस्से नहीं हैं, अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शिमी तमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो हमने कुछ जंगलों में जाकर के वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, वो बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल यू विल बिकम ए वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माय फिल्म आल्सो अगेन, मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी अभी जुम्मा जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म, हिट हो जाए फिल्म, अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे मैं कहाँ बुलाया उन्होंने, एक फाइव स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज डन,
1: क्या बात है।
0: तो मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं।
1: क्या बात है, अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुना है।
0: तुमको कहा था तुझे नहीं रूठेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका?
1: इन्होंने मेरा बहुत बार दिल तोड़ा है।
0: बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक है सुनने के लिए।
1: हाँ, 6-6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी।
2: बहुत अगर ये बोल रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई। अरे लेकिन गाना कमाल है।
0: हाँ। नहीं, अच्छा चलिए ये बताइए हमें यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
1: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये नापसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
0: पसंद तो शादी के पहले होता, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति।
1: नहीं नहीं, वो लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सोच नहीं सकती उनके बारे में।
2: अब हम क्या उससे ऊपर उठ चुके हैं। पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए फिर दोबारा से प्यार हो गया।
0: अच्छा,
2: अभी हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
0: एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
2: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
0: अच्छा,
2: कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों को।
1: गई बात गई
2: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं, अभी हम कितनी उम्र बची है इसमें भी अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
0: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के।
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
1: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, और कोई बात? घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की, इधर उधर?
1: नहीं नहीं, ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज।
0: अच्छा,
1: घर में उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत।
1: मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
0: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
2: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं। कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए। कुछ चीजें, मतलब मान लो कोई फोटो है, वो कैंची से काटे हैं तो उसके कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़े हैं, कैंची वहीं पड़ी है। फिर

0: लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत बेकार।
1: सच बोल रहे प्रतिभा जी, चलिए मान लेते हैं। बताइए अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
2: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
1: नहीं नहीं आपको अपने से बताना है।
0: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ,
2: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है।
1: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद
0: का रंग। इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था एनएसडी में, वो जो उसमें लगते थे ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई।
1: ओहो क्या बात,
0: वो ड्रेस में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो राजस्थान के या किसी फोक देसी टाइप की, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी।
1: क्या बात,
0: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी, ऐसे घुमा फिरा करके काली थी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो टीवी नहीं है, रेडियो है, कहते नहीं रेडियो में कैसे दिखेगे, पर लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ,
1: श्रोता सुन रहे हैं।
0: तो वो वाली ड्रेस जो उसका मेरा फेवरेट कलर तो जो इस पे फबता है वही है कोका कोला कलर का।
1: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो एनएसडी वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में।
2: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है, कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
1: आप गांठ रख लेती हैं मन में।
2: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
1: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी।
0: अरे बेकार में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है, मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, वो हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए
1: देखिए यहाँ
0: सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
1: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई पांच पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए, तो क्या याद कर पाएंगे बताएंगे पांच या छह?
0: हाँ बिल्कुल क्यों नहीं,
1: और उससे जुड़ी कोई खास बात कोई खास याद साझा करना।
0: अब तक 56 इज माय फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगाजल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर, श्याम बेनेगल की।
1: जी जी
0: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में हैं, और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी
1: जी,
0: जो कि आई थिंक इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
2: उसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया,
0: प्रतिभा ने भी एक रोल किया, बहुत ही बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको, कांस में भी मैंने बताया था नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट टू बनाना है अभी, बाकी है, अभी पार्ट वन तो बन गया है, 2.5 घंटे का है
1: जी,
0: 5 साल लगे बनाने में।
1: क्या बात है,
0: लेकिन बनाई अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ
1: जी। आपने डायरेक्ट भी की है?
0: जी डायरेक्ट भी मैंने की है, को प्रोड्यूस भी की है।
1: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
2: मुझसे आया था
1: जी,
0: ये तो खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट नाना पाटेकर की
1: जी,
0: उसमें कहानी थी एक्टर की कहानी थी जो कि बहुत ही सच्चा होता है, और वो अपने बच्चों
2: वो
0: को सब कुछ दे देता
2: प्ले
0: है
2: मराठी का नट सम्राट।
0: हाँ तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था, फिर सतरंगी जो मैंने मेन रोल किया था उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त, मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म, तो हमने फिर पता किया।

0: कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है
1: जी जी,
0: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पर काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनकी कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी। तो फिर हमने उस पर फिल्म बनाना शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है, गाने भी बहुत है। तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया
1: जी,
0: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहां तक मैं नहीं हूं मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद
1: जी,
0: जहां मैं नहीं हूं वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊंगा मेन उसमें अभी आना है।
1: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा?
0: दूसरा भाग बनेगा, अभी थोड़ा सा बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं।
1: जी जी, तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है, और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए, यहां कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को?

0: रावड़ी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहां की पुलिस शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार, उसको पता चलती है, तो फिर वो जाकर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मजेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर, और ये लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहां पे शूटिंग की गई थी।

0: तो वहां गए थे शूट करने, अच्छा रहा।
1: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए, आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं?
0: जी हाँ, प्रतिभा उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है, और हम हर साल करते हैं, पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी, तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और एआई फिल्में भी इस बार ऐड किया है, तो इस तरीके स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं, तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं टोटल, जिसको हम देख करके सिलेक्ट करते हैं, उसमें से तकरीबन 100 के आसपास, फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को, जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं और वो फिर रिजल्ट देते हैं, फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं, और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है, तो वेदा कुंभा में बॉम्बे में हर दिसंबर को हर साल तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म, तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
1: जी जी, बात अनुभव जी की चली है, अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पे साझा करेंगे आप?
0: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे है, आईसी, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था हवाई जहाज,
1: जी जी जी जी,
0: हाँ, उसमें मैंने काम किया था, एक छोटा सा, बढ़िया, अच्छा रोल था, छोटा
1: जी।
0: था, एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है,
1: जी
0: तो
1: जी,
0: उसका
1: जी
0: रोल था मेरा,
1: बिल्कुल।
0: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया, मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, 2 या 3 सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया है, ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन, तो मैंने कहा चलो, तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूं, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं,
1: जी, जी।
0: और बड़ा अच्छा वो करते हैं, तो इसीलिए प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं, तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने, और ओपनिंग फिल्म, और
1: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़,
0: जी जी, तो उसमें फिर हम मिले थे।
1: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए, यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया है, और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है,
2: हाँ,
1: तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इतनी सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक एक मुखिया की तरह करना?
2: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म अमोआका एक से ये मैंने काफी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहां था, और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं, और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था उस, प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
1: क्या बात है,
2: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी, और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ ये बात मुझे काफी 2-4 लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है, तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं करते हैं, शुरू किया हमने, और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड, पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया, और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में,
1: जी।
2: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वैसे भी फिल्में आ रही थी, और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली,
1: जी जी,
2: और जबकि वो

0: कोरोना का पीरियड था,
1: लॉकडाउन था
2: जी,
0: लॉकडाउन था और कहीं आप कर नहीं सकते थे। ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था, पहले दो साल हमने ऑनलाइन किया, तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पांस ऑनलाइन में भी रहा।
2: और अब वेदा कुनबा में
0: ऑफकोर्स अब तो फिजिकली तो करते ही
2: तो है। बहुत बढ़िया है। और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल भी हो सकते हैं,
0: बिल्कुल होना ही
2: और
0: चाहिए।
2: प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है जिसमें यशपाल जी भी,
0: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर है।
2: अच्छा, वो प्रोड्यूसर है तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
0: नहीं नहीं, कभी नहीं मिला। हालांकि वो चाहते हैं, कभी मुझे बोलने भी थे, तो मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना
2: कोई रोल दे दो हमें भी ऐसा बोला तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों का नाम बताइए।
0: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है
2: जी,
0: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है, है ना, ये सारी फिल्में YouTube पे अवेलेबल है। लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट, मतलब फिल्म है वो, नो एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
2: अच्छा, क्या बात है।
0: हाँ, तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक।
2: अब एक गाना सुनते हैं फिर थोड़ी सी बातें और करते हैं
0: जी।
2: एक गाना बताइए, कौन सा सुनवाए?
0: कुहू कुहू बोले कोयलिया।

0: थोड़ी देर पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनकी क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी?
1: उन्होंने मैं इनकी तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान तो ऑफ कोर्स मेरी बहुत ज्यादा
0: और कुछ फिल्मों के नाम
1: है और अब

0: 56 और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इनकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
1: क्या बात है।
0: हाँ
1: और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि ये एक्टिंग।
0: हाँ मैं बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
1: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
0: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑफकोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीजों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
1: जी जी। और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसाब

0: वाक्य सीखा मराठी का.
1: कौन सा?
0: माझी बायको मराठी आहे.
1: दो चार वाक्य सुना देती है, सिखा देती ना जो कुछ.
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब. हाँ. मैंने समझने की कोशिश बहुत की, क्योंकि मैं ससुराल में जाता था सब मराठी बोलते थे. इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी. फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे. इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे. तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दें. तो हुआ क्या कि ये एनएसडी में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलती थी, मजा शेमड़ा, मजा गाढ़ो, मजा पता नहीं क्या क्या बोलती थी. तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ो का मतलब क्या होता है. बोले गाढ़ो का मतलब गधा और शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है. मैं बोला वो तेरा भला हो जाए. अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा. एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ा, और मतलब मीनिंग कुछ और. फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो समझना बहुत जरूरी है.
1: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला?
0: मैं तो मुझे
2: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना. हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ. अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं. ऐसे ही प्यार से बस. बाकी मुझे कुछ क्या बोलते
0: तरीके,
2: हाँ एक नॉन रोमांटिक बिल्कुल, ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ. मैं बिल्कुल अखड़ आदमी हूँ बिल्कुल. मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली, कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा. हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पे लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए. और मैं सोचू यार मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई. तो इसलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था. लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है, अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है. रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है. जिंदगी में मैंने तो देख लिया अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है.
1: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात कही.
2: और पति पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं. मैंने वो सीख लिया है. तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना नहीं मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं. बिल्कुल
1: सही ऐसा
2: कभी कुछ होता नहीं
1: कि आपकी गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती.
0: नहीं नहीं इतने भी शरीफ नहीं है.
1: ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है. नहीं तो पता चलता कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते और फिर हम भ्रम में रह जाते. तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए आप दोनों साथ में गए एक दूसरे के लिए. कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा, जाहिर सी बात है.
2: हाँ, तो ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मट्ठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा सब देसी कढ़ी चावल हो गया या वहाँ का राजमा चावल हो गया या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रिपेटरी में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेटरी में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
0: क्या बात है।
1: और हमारा ही खाना हमारा ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा अच्छा। खा जाते थे।
0: तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
1: हाँ बिल्कुल बनाना आता है।
0: बना के खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
1: हाँ बिल्कुल, कई बार खिलाया है।
0: सच है प्रतिभा जी?
2: अच्छा, खिलाते हैं
0: जी जी। तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की, आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे श्रोता।
1: नहीं नहीं बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीजों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए। मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े, और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे, तो इकट्ठा कर करके हमने तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए और साइकिल,
0: अरे वाह क्या बात है,
1: आनी थी उस दिन। और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा और अंदर बाहर कभी इधर थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाएं, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते चलाते हरे की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से बात की थी, तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम, तो उस घनश्याम को हमने भेजा और उसके मोबाइल पे हमने फोटो मांगी कि हमको फोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का।

0: तो ये थी वैल्यू एक चीज, पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
1: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
0: हम तो
1: एक खिलौना बहुत कीमती हुआ करता था।
0: हम तो 20-20 पैसे, 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों। आज तो लाखों रुपया भी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
1: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो हैं एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
0: मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हम ना दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूं, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूं, देखो मैं रो रहा हूं, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता। जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते। तो वो चीजें आपके अंदर है, आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती है और हम यूज ही नहीं करते उसका। कुछ इनहिबिशन होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खासकर, कि हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार।
1: जी बिल्कुल।
0: तो मुझे लगता है कि वो चीजें आपको करनी चाहिए और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर।
1: जी बिल्कुल,
0: करो मत, हो जाओ।
1: बिल्कुल। प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया, जिसे पूरा करना चाहती हैं। महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की?
2: मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल।
2: और हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग। बस यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
0: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
1: क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच,
2: सो मच,
0: सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
2: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚୈତି ଜହ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई

0: के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: रिले करी प्रचार कल आकाशवाणी दिल्लीर कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी जयपुर केन्द्र प्रचारित होडियम ओवे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट्ज जगे FM 103.6 मेगाहर्ट्ज जगे और मोबाइल फोन न्यूज ऑन एयर आप मध्यम शुणु गोटे घोषणा राष्ट्रीय आईन सेवा प्राधिकरण एवं ओडिशा राज्य आईन सेवा प्राधिकरण निर्देशक्रमे आसंता सेप्टेम्बर मासर 12 तारीख शनिवार तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 अनुष्ठित हो जाउछि। जिला आईन सेवा प्राधिकरण नवरंगपुर तरफ एथिपाई प्रस्तुति आरंभ होइछि। जिला दौराज तथा जिला आईन सेवा प्राधिकरण नवरंगपुर अध्यक्ष संग्राम केशरी पट्टनायक आदेश क्रमे नवरंगपुर, कोडिंगा, उमरकोट, रायगढ़, चंदाहांडी एवं झरीगांव विचारालयगुड़िकरे तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 अनुष्ठित होबाक जाउछि।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: नाम होचे गौतम सावत, ग्राम हतापुर, पंचायत रणशाली, ब्लॉक पुरस्तमपुर, जिला गंजा। मु प्रधानमंत्री फसल बीमा करिथिबा जोगु आर्थिक 85,000 टंका सहायता पाइली। प्रत्येक चाषी भाई भौणीनकु अनुरोध, समस्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा करन।
2: फसल बीमा पई शीघ्र पंजीकरण करंतु।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जनसेवा केंद्र CSC को जोगाजोग करंतु।
2: फसल बीमा संबंधी सूचना पई हेल्पलाइन नंबर 1447 को कॉल करंतु।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा, योजना

0: है 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: ओहो, बड़ा चिंता रे पड़ेला मनीष। वर्षा पानी दिन एने बिल कम, समय कहीं कौन केतेबेले करिवी। हौ, बैठक के न आसिले कौन मन टिके भल लागिवो। जाय
3: कौन की सुभाष भाई, एत्ते चिंता रे कौन?
2: हाँ हाँ, सुमन पास आस। चिंता करथले कौन की?
3: कौन चिंता करथले?
2: मु भाबुथली तमर कथा।
3: अच्छा,
2: कौन कौन कौन पै भाबुथली?
3: कौन पै भाबुथले की?
2: कौन की गोटे बड़ भूल कर देछि।
3: की भूल?
2: ए समय अभाव रो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रो जो पंजीकरण,
3: हाँ
2: सेटा करि पन्नी।
3: ओ, एति पै एते चिंता?
2: हाँ हाँ।
3: ताले सुन, तमे भी सुनिबे, हम श्रोता बंधु माने भी सुनिबे।
2: हाँ, कौन कहिलो कहिलो?
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
2: हाँ, से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना त तम करि पारिनि बेले कि चिंता रे अछि। आ कोन कहू छ?
3: एथिरे चिंता करबा किछि नाही। आम ओडिसा सरकार एतिपति दायित्व बांधि एहर अवधि बढ़ाई चंती।
2: केते जाके?
3: 31 अगस्त पर्यंत।
2: ओहो, ताहले मु काली सखाळ जाय कि योजना रे अंतर्भुक्त हेबी। कोन केमिति करिया को पड़िबो, कोठी जीवा पड़िबो, मोर का मन अछि ते कहुनो।
3: अच्छा हो, मोरे कहबी तमे सुनिबो।
2: हां,
3: आम श्रोता बंधु माने भी सुनिबे।
2: नियति नियति।
3: सुभाष भाई बुझिले ना, तबे जीवो जदि तमे घर पखरे कृषि विभाग कर्मचारी माने अच्छा निकटस्थ कृषि केन्द्र को जीव सहित आलोचना कर कथबार्ता कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आराम अंतर्भुक्त हो पार।
2: अच्छा अच्छा,
3: नहले जनसेवा केन्द्र को जीव
2: कृषि मित्र भी सुनी
3: मित्र को भी पचारि पारे आम श्रोता बंधु मान भी पचारि पारे तब भी कृषि मित्र को सहायता नब।
2: ठीक अच्छे, कौन कागज पत्र नहीं की जीवे ना कौन?
3: कागज पत्र बाबद को तुमको नाक पड़ो आधार कार्ड।
2: अच्छा,
3: तुमको नाक पड़ो बैंक पासबुक।
2: हाँ,
3: पट्टा पाउथी की जिनस तुमको दरकार आस कि दरकार नहीं।
2: ओहो, आदि जो मान पट्टा पाउथी नीमा योजना अंतर्भुक्त हो पार
3: आराम भाग चाषी जो मान निजर जमी भी अच्छी समस्त सामान परिमाण सुविधा पाई
2: जामको अधिका जाना पड़ो विषय।
3: निश्चय
2: आमे जदि फसल बीमा योजना टा करिबा आमर भल मंदरे ये बहुत साहय कर।
3: हाँ।
2: देख बनार जो आमर नष्ट तार सब भरणा करिया पाई सरकार आगत सब व्यवस्था कर चुनती ना नहीं?
3: निश्चय सरकार व्यवस्था कर चुनती लोक मान को भी बुझा जाऊँगी योजना अंतर्भुक्त करने
2: जा सरकार। हाँ। को धन्यवाद दबा कहीं जो मैंने बात पड़ी थे से अंतर्भुक्त हवाई गोटे सुजोग मिली
3: बढ़िया सुजोग भाई बढ़िया सुजोग निश्चय मिली
2: समयपा तुमको बहुत धन्यवाद मोर चिंता टिके कम ये भी श्रोता मान अवगत निम्ते जनपर 31 अगस्त भितर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्भुक्त हवाई व्यवस्था करेंगे जोजोग करेंगे। आ गोटे कथा आमे खाली चाष उपर भरसा करके चलने हबनी। देखो आमको सीना सरकार साहय देले किंतु आमे से सरकारी साहय नहीं कि कौन से सब चली पारा
3: ना आमको अधिका किछ करबा को पड़िबो
2: से आमे कौन करबो
3: से आमे मोहु चाष गोपालन माछ चाष बड़ी पांपड़ ए सब जिन सब गुरुत्व देवा को पड़िबो।
2: ए सब हैला आमर समन्वित कृषि। ए समन्वित कृषि करथिले आमको कौन लाभ मिलिबो ना गोटे पटु जदि आमर आय कमिला ताले आउ गोटे पटु रे आमर आय बढ़ी कि ताको आमे भरणा कर पारिबा
3: आय बे दुटा जको समान रहिबो।
2: हां, आउ ए जो गोपालन जो कहल ये गोपालन टा हूँ आम घरे घरे करिबा दरकार।
3: गाई गोरु घरे घरे समस्त रखुचंती
2: कारण आम हूँ चाषी बंदी लोक।
3: हाँ।
2: जेते बेले जैविक कृषि उपर सरकार हंतु किंबा आमर माटी चाहूची जैविक खत से समय आम के खत किनि पारिबा ना कोठी मिलुची जैविक खत जदि आम गाई गोरु पालन करी गोबर आमकर मूत्र जदि आम संग्रह करके जैविक खत सृष्टि कर पारिबा बनई पारिबा ताहले आम फसल पाई भल हब कारण ये जैविक खतरे प्रस्तुत खाद्य पुष्टिकर एवं स्वास्थ्यप्रद
3: भाई स्वास्थ्यप्रद।
2: ठीक अच्छे बापा, आ संध्या समय किसी गीतवाद्यर व्यवस्था कर
3: गीतवाद्य पूरा खंजिकी रखी
2: तेरे पल्ली गीत तो शुणा आ श्रोता को शुणा।

टेस्ट कला परे जहां से कृमिर अंडा देखिबे से अनुसार आपन को से तार चिकित्सार प्रणाली कहिदेबे एवं जो अमर कृमि औषध से देले आमे से कृमि औषध को प्रयोग करिबा किंतु कृमि औषध जेहेतु अमर कृमि को मारिथाय तो जीव देहरे मध्य किछि से विषक्रिया करथाय तेणु चेष्टा करिबा जेतेबेळे आमे कृमि औषध देबा गाई को मध्य चेष्टा करिबा ता पूर्वरु किछि विटामिन आइदर इंजेक्शन हो किंबा तांको खाइबा को आमे मिनरल मिक्सचर हो बा जो खनिज लवण मिश्रण कहंती ता सहित किछि विटामिन आमे देबा परे प्राणी टी सुस्थ

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: यही कार्यक्रम प्रायोजक थिले कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हा, हा।

0: डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: यूपीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या

0: रही है अपने यूपीए मोबाइल से, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
2: एनपीसीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
3: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र के अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
7: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू

0: करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
2: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्व

0: राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 पैसे पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technology is developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling upon the countrymen to share their UPI experience, the Prime Minister stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. Our correspondent reports that by bridging the digital divide, advancing financial inclusion and expanding access to digital financial services, UPI has empowered individuals and communities across the country while driving broad-based economic participation.
3: Today, one out of every two real-time digital payment transactions globally happens in India. As of 2025, UPI accounts for nearly 49% of the world's real-time payment transaction volume. Last month, over 23 billion transactions were recorded through UPI across the country. UPI has emerged as the back

0: किए तुम्हें?
1: मु स्वर्गरे एक नीला परी क्रोधरे दूतगण मोर पक्ष छेदन करी मते मर्त्यपुरी को निक्षेप करिचंती।
0: तुम्हें नीला परी
2: शांतिर संकेत तुम प्रति पुणी निष्ठुरता कौन पाई
1: से एक करुण कहानी तुम्हें शुणब तेबे सुना।

0: हे मोर प्रिय देशवासी, तुम्हें माने मते महात्मा कही अमर करिथिल, किंतु मु आज अमर होई मध्य पुनर्मरण अनशन करिछि। कारण तुम्हें माने मोर स्वप्न को साकार करि पारिल नाही। जातीय संगतिर पवित्र फल रसरे तुम्हें मोर ए अनशन को भंग करि पारिब।
1: किए कहारे कंठस्वर? मोहन, मोहन बापू, बापू।

0: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାୟାପଥରେ ଶୁଣିଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଙ୍ଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂହତି ସୌରଭ, ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରସେନଜିତ ମହାନ୍ତି, ରଚନା ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ସୁନାକର ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରସେନଜିତ ମହାନ୍ତି। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୀତାରାଣୀ ଦାସ, ଶିଶିରା ଦାସ, ସେବାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ସୁବୀର କୁମାର ଦାସ, ଖୋକନ କୁମାର ଏବଂ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
3: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
2: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
3: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा,
2: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: एथल जाए कार्यक्रम रिले कर प्रचार कल आकाशवाणी कटक केन्द्र कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी जयपुर केन्द्र आज राग संगीत कार्यक्रम शुणु मल्लिकार्जुन मंसूर एवं राजशेखर मंसूर ख्याल शिल्पी परेषण कर राग शुद्ध नाट।

0: ଶୁଣିଲେ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ମିଡିୟମ୍ ୱେଭ୍ରେ 204.5 meter ତଥା 1467 kHz ଯୋଗେ, ଏଫ୍ଏମ୍ରେ 103.6 MHz ଯୋଗେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମୟ ରାତି 11:00 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାତି 11:05 ଶୁଣିବେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to countries' private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. India Today highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the special representative talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behel, was addressing the media in New Delhi today. He said the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Supreme Court today agreed to consider setting up a special bench to hear the centre's plea on OBC creamy layer criteria. The centre has sought clarification on the applicability of the 11th of March judgment of the Apex Court for candidates of the Civil Services Examination 2025. The Delhi government has said there is currently no shortage of onions or sugar in the capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta reviewed their availability and prices in the national capital today. Government said if the prices rise further, it will procure onions and sugar from a central government institution, NAFED, and arrange to make them available at various locations across the capital. It is also assured that the items will be sold at the procurement price, while the Delhi government will cover transportation and other related costs. The government has debunked claims circulating on social media that the central government will provide 1 year of free mobile recharge to all women on the occasion of Raksha Bandhan. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, said that the video is fake. The PIB said that no such announcement has been made by the central government. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of Colombo Test, Sri Lanka trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal's centuries. India are currently leading